बोला कोई गाला कहीं गए थे लोग कहीं मिथिले ले बोले कि मिथिले नदाय मिथिले ते इम्बलेंग डगिंग पुतिंग अल उल्लिंग पारे डगिंग पुतिंग अल उल्लिंग पारे इम्बले बोले अपाई लंबाल बोले थी ऐसे कहीं मुँह कुंडे अलन लोग दें आ रखे रहे मरंदा के पुतिंगल उल्लिम पाराई इन उल क्वेती लाई वाला इन ऐ उल्ले वाला उल मत मंजिया जम बरोक नमो दुएल नस कगे पहली नमो इंजोर सांग इन दुएल कोल चिकल मा लिया नमो ज्यारो करो वाला इन मिथिल दें अर्रा आयलों इन मिथिल इंगिस पुलंगी थी दुओ दुओ सी जी असिन जलम्बो असिन जलम्बो बो दुए नम एल नहीं बुलो मत नम एल अलब एला नम ए दो एनी तेया वो वाल तेया को के जंग अल एलन अंग एना प्यावो नहीं है केंग का गिबत तेंजी तेर तेर नवस पेंज भी नसलेन इलेंगी अलंगी गिसी किलमले करी नस जी इन दियो जियो याना इन दिन तबुं इंजा इन दुओ अल दुओ दुओ दुओ दुओ तो ले ना दुओ बत दुओ बत ना देंग उड़वाल बकल दाई मरंग केला कल दा जी देंग आर रजरा ला कल दा बो उड़ोगे मरंग किलमा आयलों इन ये नहीं किया से कुआ के इनंग का डूंगर रंगवा ngaing wa ba kele namo kunde namo ura ka ulitia na kien ka tege ki gan namo ngwa e al sei ingal du tu lei enja ensi inja ensi injani ela si illa jawi ensi numban na ami ensi ina pyaba du impya da ken dora si imba ina pyaba marang